के ऊपर ऐसे आ जाती है। एक्रोमियल प्रोसेस उसको बोलते हैं। वो एक्रोमियल प्रोसेस इस तरह बना हुआ है कि ये जितनी भी मांसपेशियां हैं इसको बांधने के लिए, टाई करने के लिए, वो एक तरह के ऊपर का हिस्सा बन जाता है। वो हमारी इस क्लेविकल की हड्डी से दोनों तरफ, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड पर बनता है। प्लस पीछे से तो हमने कह दिया कि सुप्रास्पाइनेटस है, इंफ्रास्पाइनेटस है, नीचे से सब स्कैपुलरिस मसल है, ये सब हमने बता दिए। लेकिन छाती से होकर जो मांसपेशियां जा रही हैं, जैसे सब स्कैपुलरिस आकर सामने लगी थी, उसके बाद तीन और मांसपेशियां हैं जो हमारे सामने छाती को बनती हैं, सेराइटिस इंटीरियर, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर। ये तीन और मांसपेशियां हैं सब स्कैपुलरिस के साथ जो ये चारों मांसपेशियां बनकर हमारे छाती का सामने का हिस्सा बनाती हैं, और ये मांसपेशियां भी जाकर इस ज्वाइंट को सपोर्ट कर रही हैं, कहीं और नहीं लग रही, इसको सपोर्ट करती हैं। दूसरा जो हमारा शोल्डर ब्लेड था ना, शोल्डर ब्लेड का बाहरी हिस्सा, बाहर हमारी छाती है ना, उसके पीछे से अगर आप देखें हमारी जो एक्सिला है, ये कांच के नीचे से जो बाहरी तरफ का उसका हिस्सा है, उससे छोटे छोटे दो और मांसपेशियां निकलती हैं, टेरिस मेजर टेरिस माइनर उसको हम बोलते हैं, वो भी इस ज्वाइंट में ही आकर सपोर्ट करते हैं। मतलब चारों ओर से कुदरत ने इसको बांधा है कि ऐसा हो ना सके, फिर भी किसी न किसी वजह से कोई मांसपेशी कमजोर होगी या कुछ ऐसा हो गया तो डिसलोकेशन आम तौर पे शोल्डर ज्वाइंट का हो जाता है। और अगर हम ये समझें कि भाई, कुछ लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर जी मैं अपने बांह को ऊपर नहीं उठा सकता, मेरा शोल्डर ज्वाइंट ऐसे हो गया, स्वेलिंग होगी या कुछ भी हो गया या इसको डिसलोकेशन हो गया, मैं ऊपर नहीं उठा सकता, तो हमें पता है कि ये ऊपर ना उठा सकने वाली काल सुप्रा स्पाइनेटस इंफ्रा स्पाइनेटस मसल की वजह से, तो मसाज कहाँ करेंगे, बैक साइड से करेंगे। डॉक्टर जी मैं बांह अपनी जो है वो दाहिने बांह को बाईं तरफ नहीं ले जा सकता, दाईं बांह को लेफ्ट बाईं तरफ नहीं ले जा सकता, दोनों बाहों को जैसे हम हग करते हैं ये इस तरह नहीं कर सकते, तो किसका मतलब है, वो जो सामने के मसल जा रहे थे ना, पेक्टोरलस मेजर पेक्टोरलस माइनर, इनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है और फिर मसाज हम इसकी करेंगे। तो इस तरह हम लोग इस शोल्डर की पोजीशन को देखेंगे कि शोल्डर की पोजीशन बैक साइड नहीं जा रही है तो सब स्कैपुलरिस मसल जो है उसकी प्रॉब्लम आ गई है, और अगर ऊपर नहीं जा रही है तो सुप्रा स्पाइनस मसल की बात आ रही है। तो मतलब अगर हम ये समझते होंगे तो फिर उसके मुताबिक इसकी मसाज करेंगे कि वो मसल चलता कहां से है, जाता किधर को है, और ये ऊपर नहीं जाने देता, इसका मतलब सूजन वगैरह हुई या उसमें कोई ब्लड अंदर आ गया या कुछ भी हो गया है तो वहां पर है। तो ये बातें मैंने आप सब लोगों को बताई थी इस बात के लिए, और उसके बाद फिर मैंने शुरू किया था अपना स्किन का जो था, और स्किन के बारे में चलते हुए मैं आपको ये बता दूं, जो सांप होता है ना, सांप कून जो उतारता है, अलग अलग सांपों की अलग अलग कंडीशन है, किसी की 7 दिन में एक पूरी कुंज जो है उतर जाती है स्किन की बारी तर, जिसको कुंज बोलते हैं हम, और कुछ सांप ऐसे हैं जिनकी 14 दिन पर उतरती, और आदमी एक ऐसा है कि उसमें पूरी की पूरी नहीं उतरती, लेकिन एवरी डे ब्रीक कण बनकर उससे वो वेपोरेट होती खत्म होती रहती है, वाश आउट होती रहती है, ये जो हमारी जो स्किन होती है, और इसका जो साइकिल होता है ये आम तौर पे 30 डेज में कंप्लीट हो जाता है, 21 से लेकर 30 डेज पर ये कंप्लीट हो जाए। हम कह सकते हैं कि आज मेरी जो स्किन है ना, नेक्स्ट 30 डेज में जो स्किन होगी होगी तो वही, क्योंकि इसके ऊपर से जो ऊपर वाली परत है एक्टोडर्म वाली वो निकल गई है, और नवा एक्टोडर्म जो है वो सामने हमारे साथ आया हुआ है। सो ये हमें समझने की जरूरत है। उसके बाद फिर मैंने ये कहा था कि भाई इस स्किन की बनतर का ओरिजिन कहाँ हुआ, शुरुआत से लें, क्योंकि स्किन की बीमारियां बहुत ज्यादा ऐसी बीमारियां हैं चीमा साहब जो ठीक नहीं होती, कारण उसका ये होता है कि हम लोग उसका बेसिक चलन जो सिद्धांत है चमड़ी का वो नहीं जानते होते। अगर हम जानते होते तो फिर हम उसको उसके मुताबिक ही ट्रीट करते तो शायद जल्दी ठीक होने की संभावना होती। कैसे, शरीर के अंदर जितनी भी चीजें हम डालते हैं या शरीर के अंदर जितने भी अंग काम कर रहे हैं, सभी अंग गार्बेज पैदा करते हैं और सभी

0: संघों का गार्बेज निकालने के लिए कुदरत ने एक नियम बनाया हुआ है और प्रतीक रस्ते पेशाब के रस्ते कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, जिस चीज को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। और जो लोग शरीर के अंदर अंदर ही रहते हैं उनको हम सिक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन अगर बाहर नहीं निकला तो वो कहीं ना कहीं जमा हो जाएगा, कहीं ना कहीं जमा हो जाएगा जिस अंग की खराबी की वजह से ये एक्सक्रीशन नहीं हो पाया, उस अंग का फंक्शन जो है वो खराब हो जाएगा। अल्टीमेट कुदरत ये चाहती है कि अंदर के जितने भी अंग हैं वो बहुत जरूरी हैं जीवन के लिए, उनको चलता रखना चाहिए। कहीं पर रहता है ना काम करते करते कोई चीज, अच्छा यार इसको एकदम साइड पे कर देते हैं उसके बाद इसको फिर बाद में देखेंगे, पहले काम तो चलता करते हैं। इस तरह की बात करते हैं तो कुदरत भी यही करती है कि जितना भी गार्बेज रेजिडुअल रह जाता है बच जाता है, उसके नॉर्मल साथ निकालने वाले हैं उनसे जो बच जाता है उसको ये स्किन पर भेज देती है। कारण क्योंकि स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लिवर है, किडनी है, इवन अंतड़ियां भी हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, ये लिमिटेड एरिया में है। स्किन इन सभी को कवर करती है और स्किन के ऊपर ये भेज देती है कि ये बहुत बड़ा जगह खाली है, स्टोरेज है हमारा, इसमें रख दें। दूसरी बात ये है कि ये रखना जाना कहाँ से होता है, ब्लड से होता है और बॉडी के पूरे ब्लड का 10% हिस्सा हमारी चमड़ी में रहता है। इसका मतलब अगर गार्बेज जो बच गया रेजिडुअल वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमम उसका हिस्सा जो है वो इस ब्लड में है, जिसको कुदरत स्किन के जरिए निकालने की कोशिश करती है। और स्किन के जरिए निकालने की कोशिश करती है तो कुछ इस तरह का गार्बेज बहुत ज्यादा संघना हो जाता है जो नहीं निकल पाता, तो हम फिर खारिश करते हैं। हम ड्राई खारिश क्यों होती, इसीलिए होती है कि कुदरत उस गार्बेज को बाहर निकालने की कोशिश करती है। वैसे स्किन के जो मुसाम हैं वो आम तौर पे बंद रहते हैं, खुलते नहीं है। या मैं ये चलते चलते कल के प्रोग्राम में ये बता दिया था क्योंकि मैंने ये कहा था हिंदी में बोलूं, अंग्रेजी में बोलूं, पंजाबी में बोलूं, मेरे वर्ड डिफरेंट हो जाते हैं। नॉलेज मैंने वही देना है आप लोगों को, एग्जांपल कई बार डिफरेंट हो जाती है। तो मैंने ये कहा था कि जब सेल की बात हम कर रहे थे तो मैंने ये कहा था सेल एक इस तरह का किला है जिसकी कोई डोर दरवाजा नहीं है, कोई विंडो नहीं है उसमें, लेकिन इस किले में आवाजाही होती है, सामान अंदर जाता भी है, सामान बाहर आता भी है और इसके अंदर बहुत बड़ी मशीनरी काम कर रही है। जितने भी अंग थे, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ ऐसा है जो अंदर काम कर रहा है। तो काम तभी कर रहा है ना जो बाहर से मार आ रहा है, अंदर का जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो दरवाजा कोई नहीं, तो फिर कैसे होता है? उस सिस्टम का नाम कुदरत की वजह से हमने ये रखा था परमीएबिलिटी विद प्रेशर। एक तरफ प्रेशर बढ़ेगा तो दूसरी तरफ चीज निकल जाएगी, दूसरी तरफ प्रेशर बढ़ेगा तो वहां से चीज इधर आ जाएगी। जैसे मैंने लस्सी पुणने की या चाय छानने की, जैसे पहले हम कपड़े से छानते थे ना, आपके छाननी पोनी वगैरह आ गई, कपड़े से छानते थे तो वो ऐसे हो जाता था। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि स्किन में ये मुसाम आमतौर पे बंद रहते हैं। जब गार्बेज बहुत ज्यादा यहाँ आ जाता है स्किन के अंदर का, जो कंजेशन ज्यादा हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसको बाहर निकालने की कोशिश करती है स्किन। लेकिन अगर मुसाम सख्त है नहीं निकलते तो फिर हम खारिश करते हैं और कई बार उसमें छोटी छोटी फिंसियां भी हो जाती हैं और हम फिर उसको खारिश करके छील देते हैं। तो अगर हमारा सिद्धांत आज का है, मेडिकल मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या करती, अच्छा भाई इसके ऊपर ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट लगाओ, ये लगाओ जी, वो लगाओ जी, ये करो जी, वो करो जी, ये सब चीजें हम करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? नेचर के खिलाफ कर रहे हैं। और जब तक हम जिंदा हैं नेचर जीतेगी, हम नहीं जीत सकते। जितने भी उपराले करें जबरदस्ती के, हम नहीं जीत सकते, जीवन चलता रहेगा और ये उसको बाहर निकालने की कोशिश करती रहेगी। और लेकिन अगर हमने नेचर को सहयोग कर दिया कि नहीं भाई इसको निकालना है तो निकाल दो, प्लस जहाँ से ये गार्बेज आ रहा है उसको फाइंड आउट करो और उसको क्लीन करो ताकि वहां से ज्यादा गार्बेज ना बने, ताकि वही चीज जो है ठीक होनी शुरू हो जाए। पर जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है अल्टीमेट उसमें ऐसा होना शुरू हो जाता है कि एक्सेस गार्बेज स्किन में गया, नहीं निकल पाया, लेकिन उसके निकलने के लिए कुदरत ने और कुछ उपराला भी किया हुआ है और भी कोशिश की है कि हमारी स्किन में कुछ ग्लैंड्स लगा दिए, अलग अलग जगह ग्लैंड्स लगा दिए हैं जिनको हम बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड्स का एक तरह के एग्जांपल हम दे सकते हैं, जो हम टोका है ना जो चारा कुटरने के लिए हम बनाते हैं चॉपिंग करने के लिए, वो चॉपिंग करने वाला काम करता है कि जितना भी खून में आ गया गार्बेज चमड़ी के मसामों से बाहर नहीं निकल रहा उसको ब्रीक करके इससे निकालने की कोशिश करती है। और वो जो कॉन्सेंट्रेटेड गार्बेज होता है जिसको चॉप करके इंडो जो हमारे एपोक्राइन ग्लैंड से उसने बाहर निकाला तो वो टॉक्सिक होगा, केमिकल होगा, फिर हम बहुत खारिज करते हैं, बहुत खारिज करते हैं, छिला जाता है और बोलते हैं इसको तो एक्जिमा हो गया भाई, और एक्जिमा ऊपर से सूखना शुरू हो गया, ये तो भी सोराइसिस हो गया भाई। अलग अलग नाम डॉक्टरों ने उसके रख दिए हैं इस कंडीशन के कि वो गार्बेज चमड़ी से निकलकर बाहर आ रहा है और हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर लेपन पोछा करें, वो कामयाब होता नहीं क्योंकि अंदर जहां से गार्बेज आ रहा है वो उसकी हम शनाख्त ही नहीं कर रहे, ये देख ही नहीं रहे कि आ कहां से रहा है। अगर हम वहां से बंद कर देंगे, अगर नाली में गंदा पानी आ रहा है हम इसको साफ करते रहे करते रहे करते रहे, अल्टीमेट जब तक हम पीछे से वो नाली का गंदा पानी बंद नहीं करेंगे ये ठीक नहीं होगा। तो ये सिद्धांत हमें फॉलो करने की जरूरत है जो नेचर का है, हमारा नहीं है, और कामयाब भी हम तब होंगे कि जो नेचर चाहती है वही हम करें। एक छोटी सी एग्जांपल और मैं इसकी बात की दूंगा आपको, कुछ खा लिया कुदरत उसको फिट नहीं समझती शरीर के लिए, शरीर चाहता है कि नहीं इसको हम निकाल दें, उल्टी आती है और हम क्या करते हैं, अरे दवाई लो यार उल्टी आ रही बहुत ज्यादा, दवाई उल्टी बंद हो जाए, हम जबरदस्ती उस उल्टी को बंद करने के बाद आप देखते हैं घबराहट हो रही है यार, दवाई तो खाई थी उल्टी तो बंद हो गई लेकिन घबराहट हो रही है, कुछ देर बाद उसको टटिंगा लग गई, ओ यार टटिंगा लग गई उसको टटिंगा बंद कर दो इसमें, हाँ जी स्टूल बहुत ज्यादा मोशन आ रहा है बंद कर दो, लेकिन कुदरत उस चीज को निकालना चाहती ये हम नहीं समझ रहे, उसमें उसकी हेल्प नहीं कर रहे कि ये निकल जाए, लेकिन जब ज्यादा एक्सेस चीज हम निकालते हैं उसके साथ हमारी जीवन शक्ति भी बनी रहे उसका कोई और उपराला है कि हम उसका पानी बढ़ा दें, डिजॉल्व कर दें, उसको निकालने की आसानी कर दें, ये हम नहीं करते, लेकिन हम उसको बंद करने की कोशिश करते हैं हमारी खराबी होती। तो वही बात स्किन में हमारी होती है कि हम लोग इसमें इस तरह के ऑइंटमेंट्स लगाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो अंदर दब जाता है और नेचर फिर एक पॉइंट से कहीं दूसरे और पॉइंट से निकालने की कोशिश कर, मैंने एक लगभग जीवदार हूँ ना तो वो उसी तरह की एग्जाम्पल है, मेरे चूहे होते हैं ना खेतों में तो हम लोग चूहे की खुद बंद करने की कोशिश करते हैं, वो एक जगह बंद करते हैं वो दूसरी जगह निकल जाता है, दूसरी जगह बंद करते वो ऐसे खत्म नहीं होता जब तक वो मरते नहीं है। तो इसी तरह की जब तक हम लोग अंदर का नियम नहीं समझेंगे, स्किन की बात चल रही है, तब तक हम स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर पाएंगे। और आज तक जितने भी डॉक्टर लोग हैं आजकल मॉडर्न मेडिसिन के साइंस के वो स्टीरॉयड पे पहुंच गए, अब स्टीरॉयड को एक तरह के नशा देकर किसी चीज को चलाने वाली बात है, जबरदस्ती किसी चीज को बंद करने वाली बात है और वो उसके बाद किडनी में क्या डैमेज हो रहा है, लिवर फंक्शन में क्या डैमेज हो रहा है और सिस्टम में क्या क्या तब्दीलियां आ रही, वो कोई भी डॉक्टर ये मानने को तैयार नहीं कि मैंने वो स्टीरॉयड दिया था इसकी वजह से हुआ, ना ना ना ये तो दूसरी बीमारी है ना, मैंने तो स्किन का इलाज किया था, मैंने किडनी का या लिवर का थोड़ा किया था, किडनी या लिवर की और प्रॉब्लम होगी, तो इस तरह कोई भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब तक हम सिद्धांत को फॉलो नहीं करेंगे ना, नेचर ने जो बना दिया नेचर से बड़े हम नहीं है, सिद्धांत को फॉलो करेंगे तो हम नतीजे पर पहुंच सकेंगे और उसको दुरुस्त कर पाएंगे, तभी उसका ठीक हो पाएगा। अब हम बात कर रहे थे स्किन की, तो स्किन के बारे में मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये इंट्रा यूट्रिन लाइफ जीवन के नया जीवन के शुरू होने के एक महीने के बाद ही इसकी बनतर बननी शुरू हो जाती है। मैंने ये कहा था एग्जांपल के तौर पर, अगर एक बड़ा बबल हो फुकाना हो, एक छोटा हो और बैलून, और छोटे बैलून को अगर बड़े बैलून में आप फिक्स करना चाहें, उसको फिट करना चाहें, तो क्या होगा? बड़े बैलून की एक तो बाहरी तय हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, सिर्फ जो जहां दोनों मिले हैं उनकी अंदर की होगी जगह, जहां पर दोनों तय उनकी मिली है वो हो गया मेसोडर्म। फिर एक बाहरी तय इसकी बच गई है, उसको हम कहेंगे इंट्रोडर्म। तो इस तरह हमने तीन तय बना दी उन चीजों की, और ये तीन तय वो हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी की तामीर होती है। सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला घेरा था बड़े बैलून का, उससे बनता है एक्टोडर्म। और ये एक्टोडर्म बनाता क्या है? हमारी चमड़ी, हमारे बाल, हमारे नाखून, ये सब चीजें, और इवन नर्वस सिस्टम, ये इस एक्टोडर्म से बनता है। और फिर दूसरा लेयर हमने जहाँ पर दोनों मिल गए थे आपस में, माँ और बाप का दोनों का हिस्सा मिल गया था, उससे बनते हैं अंग। अंदर के जितने भी अंग हैं वो उस चीज से, जिसको मेसोडर्म बोलते हैं, उससे ये बनते हैं। हार्ट, लिवर, लंग, ये सारे उस चीज से बनते हैं। और उसके बाद बिल्कुल सबसे अंदर का जो हिस्सा था कि हमारा बच गया, जिसको बड़े हिस्से ने पूरा ओवरलैप कर लिया था, और उसको हम बोलते हैं इंट्रोडर्म, जिससे जितने भी हमारे अंग हैं उसके अंदर की जितनी भी झिल्ली है, अंदर का लेयर है, वो उससे बनता है। जैसे मुंह में म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारा, आंतड़ियों में म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारा, हर एक अंग के अंदर का जो ल्यूमन है वो उसी से बनता है। तो मतलब किसी अंग में अगर कोई खराबी आ जाए, अगर तो खराबी वो एक्वायर्ड है, मतलब हमारी गलती से, हमने हमारे खान पान, हमारे रहन सहन या किसी से ऐसी हो गई है, तो फिर उसको हम दुरुस्त कर पाएंगे। लेकिन अगर वो खराबी जेनेटिक करेक्टर से आ रही है, तो फिर हम उसको सिर्फ मेंटेन कर पाएंगे, उसको दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। ये हमें समझने की जरूरत है, और उसके मुताबिक ही उसका उपचार किया जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि स्किन जो बनती है वो हमारे एक्टोडर्म से बनती है, बाहरी लेयर जो बना उससे हमारी ये स्किन बनती है एक्टोडर्म से। और इस स्किन के जो है फिर आगे तीन पर्दे हैं, इस स्किन के, हमारी जो चमड़ी है इसके तीन पर्दे हैं। एक को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, दूसरे को बोलते हैं हम डर्मिस, तीसरे को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। और एपिडर्मिस जुड़ा है हमारा सबसे ऊपर वाला लेयर है, जो हमेशा बदलता रहता है, जिसके बारे में सांप की पूंछ की बात मैंने आपको बताई थी ना, ये हमेशा चेंज होता रहता है, और वो बिल्कुल ब्रीक ऐसा होता रहता है, नेचर का है ना, हमारी इस तरह की नेचर है। अगर बड़े बड़े चकत्ते से वाइट वाइट से निकलने शुरू हो जाते हैं तो हम समझते हैं ये बीमारी है, डॉक्टर लोग बोलते हैं सोराइसिस हो गया, उसका नाम रख दिया ना हमने, है तो स्किन की प्रॉब्लम है। और वो बड़े बड़े चकत्ते से उतरने शुरू हो जाते हैं, वाइट वाइट जैसा निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो इस तरह निकल रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता, हम नहाते हैं, मालिश करते हैं, कुछ करते हैं, वो इतना ब्रीक होके निकल जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे स्किन का एक्टोडर्म हमेशा चेंज हो रहा है, और इसकी जो उम्र है वो ज्यादा से ज्यादा 21 से लेकर 30 डेज की, 21 से 30 दिन की। आज के एपिडर्मिस को नेक्स्ट जो 30 दिन के बाद ये नहीं होगा, वो नई चीज होगी, लेकिन कैसे उतरा है वो हमें सांप की कुंज की तरह दिखाई नहीं देता, और अगर दिखाई देना शुरू कर दे तो ये गलत हो गया, और सांप की कुंज अगर इतनी निकलनी शुरू हो जाए वो उसके लिए गलत हो जाएगा। नेचर का विधान है, उसके मुताबिक हम इसको इस तरह करते हैं कि भाई ये साफ होता रहे। तो एपिडर्मिस का जो लेयर है ये आम तौर पे इसके नीचे नर्व एंडिंग्स होती है, कभी छिल जाए ना, रगड़ लग जाए ना कहीं पर किसी चीज, हमारा बांह की किसी चीज की, वो बहुत दर्द करती है। क्यों दर्द करती है? क्योंकि उसके नीचे जो है हमारी नर्व एंडिंग्स, वो जो हमारा बीच वाला डर्मस लेयर था ना, उसके एंड तक वो आती है नीचे से, और वो नर्व एंडिंग्स जब नंगी हो जाती हैं छिलने से, तो वो बहुत ज्यादा दर्द करती है। इसीलिए अगर छिल जाए, रगड़ लग जाए, तो हमारे वो उस अंग पे, उस जगह पे बहुत ज्यादा दर्द होनी शुरू हो जाती है। उसका कारण नर्व एंडिंग्स का होता है। और ये जो हमारा मेसोडर्म है, उसके नीचे का हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जहां पर खून की नालियां आती हैं, जहां पर नर्व सिस्टम आता है, जहां से लिम्फ चैनल जो वापस जाता है, जहां से हेयर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, एपिडर्मस से नीचे जो डर्मस का एरिया है उसके ये चीजें होती हैं जहां से हेयर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ जुड़ा हुआ होता है हमारा फैट की तह, जितना एक्सेस डिपोजिशन हो जाता है जिसका कोई निवारण नहीं होता, ना वो बाहर निकल पाया ना वो वापस जाया, वो रेजिडुअल तौर पर ये इस लेयर के नीचे जमा रहता है, डर्मस लेयर के नीचे वो जमा रहता है जिससे वो फैट की तह बन जाती है। बहुत से लोग मोटे मोटे होते हैं ना, आजकल डॉक्टर लोग सर्जरी करनी शुरू कर दी है कि एक्सरसाइज तो ये करता नहीं, फैट इसका कम होता नहीं, तो अच्छा भी इसकी आजकल सर्जरी, लेपोसेक्शन वगैरह के नाम सुना होगा आपने, लेपोसेक्शन से सक्शन मशीनें बनी हुई हैं जिससे वो सक कर लेते हैं। पहले ऐसे होता था कि पेट को चीर कर ये डर्मस के लेयर के नीचे जो हमारी तह बनी होती थी पीले रंग की, जैसे चर्बी होती घी होता है ना उस तरह, उसको निकाल देते थे जी, और फिर चमड़ी को सीज देते थे, अगर फिर उसने एक्सरसाइज नहीं की वो तय फिर रेजिडुअल तौर पे वो बननी शुरू हो जाती थी। तो बार बार ऐसा होता रहता था जब तक हम उस रेजिडुअल को निकालते नहीं, उसको काम नहीं करते, या जिस वजह से ये रेजिडुअल फैट इकट्ठा हो रहा है उसका कोई निवारण नहीं करते, ऐसा नहीं होगा। तो दो लेयर की मैंने बात की, पहला जरा हमारा है एपिडर्मिस का, दूसरा मैंने बात की डर्मिस की, जिसमें जितनी भी खून की नाड़ियां हैं अगर वहां तक जख्म होता है तो खून बहुत निकलता है, वहां पर जाता है तो खून बहुत निकलता है, वहां पर जाता है तो नर्व इंडिंग्स होती हैं, उसकी रिपेयर में टाइम लगता है। तो इस तरह ये डर्मस का लेयर है, उसके नीचे है हमारा हाइपोडर्मस। हाइपो का मतलब होता है नीचे, डर्मस का मतलब होता है स्किन का वो सेकेंड लेयर, और इस लेयर के इसका मतलब ये है कि जितनी भी प्रोलिफिरेशन, जितनी भी नई डेवलपमेंट, जितना भी स्किन के संबंध में किसी के वार्ट्स निकल आते हैं, किसी को कुछ ऐसे कई चीजें अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जो स्किन से नीचे निकल जाती हैं और डॉक्टर ऊपर से काट देते हैं, अच्छा इसको काट देते हैं जी, इसको हम कॉटराइज कर देते हैं जी, बहुत सी चीजों को डॉक्टर लोग कॉटराइज करते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा रिपेयर हो जाती है। कारण ये है कि उनकी जो रूट है वो हमारे इस हाइपोडर्मस तक है, और हाइपोडर्मस तक हम खोजेंगे नीचे से तो नीचे क्या है, हड्डी, हड्डी को नंगा कर देंगे तो उसमें इन्फेक्शन भी जा सकता है, उसमें और बड़ी बात भी हो सकती है, उसमें कोई और इन्फेक्शन भी आ सकता है, इसलिए इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर बहुत सोचते हैं। जितने भी हम वार्ट्स ना आपने देखा होगा, वार्ट्स होते हैं बहुत जगह पर, और वार्ट्स को लोग कटवा देते हैं, वार्ट्स काट दिया फिर दोबारा वार्ट्स हो जाते हैं, वार्ट्स कटवा दिया फिर हो गया, इस तरह की बहुत सी चीजें स्किन के ऊपर होनी शुरू हो जाती हैं, जिनको हम कॉटराइज करते हैं ऊपर से रिमूव करते हैं, तो मतलब क्या है कि हम डर्मस तक ही गए हैं, और इसका ओरिजिन कहाँ पर था, हाइपोडर्मस पे था, और हाइपोडर्मस तक अगर जाएंगे तो खतरा है, नीचे बोन है, और बोन इन्फेक्शन हो गया तो आपको पता है कि हमारी जो लंबी बोन है इन सब में एक फैक्ट्री लगी हुई है जिससे हमारे खून के सेल बनते हैं, और खून के सेल वाली फैक्ट्री में कोई इन्फेक्शन चला गया तो फिर सेल सही नहीं ना बनेंगे, और आगे जाकर वो काम क्या करेंगे, WBC बनेंगे, RBCs बनेंगे, और WBC के अलग अलग फॉर्म है उस तरह के सेल बनेंगे, वो खराब बनेंगे, खराब बनेंगे तो सारे शरीर का सिस्टम, अगर बोन का इन्फेक्शन होता है तो वो पूरे शरीर पर अपना असर छोड़ता है, इसलिए ये जो कॉटराइजेशन करना या किसी वार्ड्स को रिमूव करना ये कोई परमानेंट हल नहीं है, हल ये है कि हम ये सोचें कि ये रेजिडुअल इरप्शन जो भी आया है, आया क्यों है, किसकी वजह से, शरीर के जितने भी अंग हैं उनमें से किस अंग में खराबी है, क्योंकि हर एक अंग में चलते चलते कोई खराबी आ सकती है, चलते चलते कोई नुक्स हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि वो जानकारी नहीं रहती, उसकी जानकारी रहती है, बशर्ते कि हम इतने जानकार हों। इसके लिए मैंने कई बार आपको एग्जांपल दी कि अगर तो समझदार माँ होती है ना तो बच्चा रोता है और उसको पता होता है कि बच्चा मेरा रो रहा है इसको दूध चाहिए, या बच्चा मेरा रो रहा है इसको पॉटी करनी है, या इसको सोना है, वो माँ उसके रोने से ही अंदाजा लगा लेती है और उसके मुताबिक उसका दिमाग सेट हो चुका होता है, वो उस तरह की करती है, और अगर जिसको नहीं पता बेचारी को और उसका बच्चा बीच में ही नैपकिन में पॉटी करी जा रहा है, बीच में ही सारा को पेशाब करी जा रहा है और रोए जा रहा है, तो इस तरह का हालात बनता है कि हम नहीं जानते होते कि इसके पीछे की कहानी क्या है और अपनी मर्जी से हालात के मुताबिक आंख से बाहर करना चाहते हैं कि जो आंख को दिखाई देता है ना, ये नहीं दिखना चाहिए यार, ये नहीं दिखना चाहिए। लेकिन है कहां से, उसके पीछे कारण क्या है वो हम नहीं जानते। इसलिए बीमारियां स्किन की, खास तौर पे स्किन की बीमारियां बार बार होती हैं, बार बार आती रहती हैं और हम लोग वही उनका काम करते रहते हैं। और अल्टीमेट एक जगह से अगर आपने किसी चीज को हटा दिया वो दूसरी जगह हो जाती, उधर सोचती है कि भाई यहाँ तो मैंने किया था, ये इसने बंद कर दिया। क्योंकि जब स्कार टिश्यू बनते हैं ना, किसी चीज को कॉटराइज कर दो, किसी मौके को, वार्ड्स को निकाल दो, उसके नीचे की स्किन इस तरह की हो सकती हो जाती है कि वो नॉर्मल चमड़ी के हिस्सा नहीं रहती, एक डिफरेंट टाइप का, जैसे पशु का वो पुल्ले की बात मैंने कही ना, वो उस तरह का बन जाता है सख्त, इसको स्कार बांधते हैं। उस स्कार से तो फिर निकल नहीं सकता, वो सख्त हो गया, तो फिर किसी और जगह से निकालती। और इसी तरह ही स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, उनमें जितना भी आपको क्रीम लगाने हैं, ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट्स लगाने हैं, इवन आप टू स्टीरॉयड तक लगाते हो, तो वो पूरे शरीर में फैलनी शुरू हो जाती है। एक बार और मैंने कही थी, आज का प्रोग्राम शुरू खत्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जितने अंग है ना अंदर के, उन अंगों का कनेक्शन बाहर भी है कहीं ना कहीं, और अंदर के जिस अंग को भी आप अनगहली से देख रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, उसके मुताबिक उसका नहीं निवारण कर रहे हैं, तो वो अंदर उस अंग में जाएगी जहां उसका उसका कनेक्शन है। जैसे स्किन का जो एक्जिमा वगैरह का जो भी कनेक्शन है वो लंग से है, और आप देखिएगा जितने भी सुनने वाले हैं इस बात को एक्सपेरिमेंट करना अपने अपने नजदीक नजदीक, अगर कोई बंदा स्किन का पेशेंट है और अगर कोई बंदा दमे का पेशेंट है और उनसे आप पूछिएगा, तो ये दोनों चीजें उनको होंगी। एक ठीक होगी, अगर स्किन ठीक हो गई है, अपॉइंटमेंट लगाया ठीक हो गई है, तो वो देखेंगे सांस की तकलीफ ज्यादा हो गई है, और सांस की तकलीफ हुई है, उसने कुछ खाया, कुछ किया, दवाई जबरदस्ती उसको बंद किया, ठीक किया, और वो स्किन की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पड़ जाएगी। इसको माइन्यूटली देखिएगा, ये ऐसा होता है कारण कि हमने नेचर के असूल को समझा ही नहीं है कि नेचर क्या चाहती है, उसको करना क्या है। अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे तो फिर दोबारा रेपिटेशन इस टाइप का नहीं होता। तो स्किन का जो चैप्टर है, ये हिंदी में मैंने कहना था, अभी बहुत कुछ इसके फंक्शन में बाकी बहुत कुछ है जो मैंने अभी हिंदी में बताना था, लेकिन हाँ, इसको हम कल अंग्रेजी के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। कल का प्रोग्राम अंग्रेजी में होगा स्किन का ही प्रोग्राम, और उसके बाद फिर हम आगे नए चैप्टर के पास चलेंगे। मैं गुरदीप सिंह संधू, आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। 9701 सेरा एन कोर्ट, डबलिन, कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 408-687-1899। किसी वक्त किसी बीमारी से पीड़ित हैं, कोई हल नहीं दिखाई दे रहा, तो आप सेकंड ओपिनियन लेने के लिए, या रुकावट कहाँ है, क्या हो सकता है, क्या आप करें तो उससे बेहतरी हो सकती है, ये जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 408-687-1899। और जाते जाते जो रिक्वेस्ट हम हमेशा ही करते हैं, अगर आपको लगे कि इन प्रोग्रामों से आपको कुछ जानकारी मिल रही है, आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो रही है, तो ये बात आपके नियरेस्ट डियरेस्ट को पहुंचाएं, ताकि वो भी मेरे साथ फेसबुक में होम्योपैथिक नेचुरल मेडिसिन का जो डॉक्टर गुरदीप सिंह का फेसबुक है उसमें जुड़े, यूट्यूब चैनल से जुड़े, या सब रंग रेडियो स्टेशन से जुड़े, या प्रभात रेडियो स्टेशन से जुड़े, और इन सब चीजों से आप जुड़ के इन प्रोग्रामों का आनंद ले सकते हैं, जानकारी बढ़ा सकते हैं। और सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तीन दिन यही प्रोग्राम टीवी पे आते हैं, साझी सोच टीवी, जो पटियाला से रिले हो रहा है, जो आपके इंडिया में पटियाला से रिलीज होता है साझी सोच टीवी, आप सुन रहे हैं जितने भी, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर जो सुनने वाले हैं ना मेरे, वो इंडिया में ज्यादा है, हर एक स्टेट से है, और वो ये जान रहे हैं कि आपके ही देश में पटियाला से चलने वाला रेडियो स्टेशन सांझी सोच टीवी, वो आप अगर उसका ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ये प्रोग्राम जो है वहां टीवी पर भी दिखाए जाते हैं। आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ
2: ਥੈਂਕ ਯੂ
1: ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੇ ਰਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ,
0: ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ,
1: ਥੈਂਕ ਯੂ।

तुम्हारी नाड़ी आकर रुक गई है, उसको हमने बोल दिया एपिग्लोटिस, एक जंक्शन का नाम रख दिया हमने एपिग्लोटिस। वहां पर आके इनका आपस में राउट चेंज हो जाता है, रास्ता चेंज हो जाता है, कि सा वाली नाली, सा की नाली आगे आ जाती है, खुराक वाली नाली पीछे आ जाती है, क्योंकि उसको तो आगे नीचे और जाना है, स्टोमक की तरफ जाना है, और इसी तरह ही सांस वाली नाली आगे आ जाती है। लेकिन लेकिन एक और तब्दीली यहाँ पर होती, क्या है उसकी दूसरी तब्दीली? ये है कि इस एपिग्लोटिस से नीचे का जो पोर्शन खुराक का है उसका नाम हमने बदल दिया, इसको ईसोफेगस कर दिया, और सांस वाली नाली जो इस एपिग्लोटिस से आगे फेफड़ों की तरफ जा रही है उसका नाम हमने बदल दिया, उसको ब्रोंकस कह दिया। और अब ब्रोंकस तो दो हो गई क्योंकि दो फेफड़े हैं, ईसोफेगस एक ही स्टोमक में जा रही है वो एक ही रही, पैरिंग से ईसोफेगस हो गया, लैरिंग से ब्रोंकस हो गया, लेकिन ब्रोंकस दो हो गए इसी जंक्शन से, और एक राइट फेफड़े को, दाहिने फेफड़े को जा रही है, एक बाएं फेफड़े को जा रही है, और सांस पूरा हमारा उसी तरह चल रहा है। अब बात क्या है, अब ये जो जंक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुराक के लिए भी है, सांस के लिए भी। खुराक के बिना हम कुछ देर रह सकेंगे लेकिन हवा के बिना तो नहीं रह सकेंगे ना, हमारी लिमिट 3 से 5 मिनट तक ही है मैक्सिमम, इसलिए ये बड़ा जरूरी कार्रवाई, जरूरी रास्ता है। जैसे अब लड़ाई चली ना, जी मसा बातें बता रहे थे, अब तेल का आदान प्रदान वहां से होना है, और जिस दरिया के उस लिंक से, समुन्द्र के लिंक से होना है, अगर वो ही नहीं खुला होगा, वो ही किसी कंट्रोल में होगा, तो उसकी मर्जी है, आने दे मर्जी है ना जाने दे, और अगर इसमें कोई नुक्स हो गया तो कितने देश प्रभावित हो गए, पूरा देश ही, दुनिया ही प्रभावित हो जाएगी उससे, है जी। सो इसलिए हर्मस उसको बोलते हैं, तो इसके लिए ये इतना ही इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, और इस एपिग्लोटिस की रक्षा करने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, इसके ऊपर गिलाफ एक तरह दिया कुदरत ने, वो स्प्रिंग जैसा है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, ट्रेकिया का ऐसा गिलाफ है जो इसके ऊपर स्प्रिंग की तरह बना हुआ है, इसके अंदर मांसपेशियां हैं, जैसे पसलियां एक दूसरे के बजी हुई है ना, और उनको बीच बीच में जो उसको मांसपेशियां, इंटरकॉस्टल मसल जिसका नाम मैंने लिया, इसी तरह ही ट्रेकिया को भी स्प्रिंग टाइप कार्टिलेजस सब्सटेंस है जो इसको बोलता है, बांधता है, और ये ट्रेकिया जो है खास तौर पे इस जंक्शन को, और इस जंक्शन के साथ ही ऊपर से आ रही है सुपीरियर वेना कावा, वो नाली जो ब्रेन का इस्तेमाल किया हुआ खून वापस लेकर दिल को जा रही है, और गार्बेज रुकी जाए तो क्या होगा, इसी तरह ही हार्ट से निकलकर जो नालियां ब्रेन को खून सप्लाई कर रही हैं कि भाई लो खुराक भी लो, ऑक्सीजन भी लो तो ब्रेन काम करे, वो दो नालियां हैं कैरोटिड आर्टरीज, तो वो कैरोटिड आर्टरीज भी यहां से होकर गुजर रही हैं, गर्दन से ही निकल रही हैं, और इसको उसने कवर कर दिया है। तो मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं कि ये पूरी चीजों की एंट्री नीचे जा रही है चेस्ट में, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। और ये जो ईसोफेगस की मैंने बात की कि बाकी तो भाई बोरेंस ब्रोंकस आई तो दोनों फेफड़ों में चली गई, और ऊपर से जो खून की नाली आई वो हार्ट तक रह गई, वो चेस्ट तक ही उनका लिमिटेड था, लेकिन ईसोफेगस तो छाती को पार करके नीचे जा रहा है, और दूसरी वो नाली जो नीचे पूरे शरीर को खून की, खुराक की, ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी, जिसको हमने एओर्टा बोला था और जगह जगह उसके नाम बदल दिए थे, पहले जब हार्ट से वो शुरू हुई थी उसका नाम था असेंडिंग एओर्टा, उसके बाद फिर आर्क ऑफ एओर्टा, वो घूम गई, घूम के पीछे की तरफ चली गई और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे जाने लगी, निकली तो यहीं से ना, और उसको हमने आर्क ऑफ एओर्टा बोल दिया था, और फिर छाती में रही तो उसका नाम थोरेसिक डिसेंडिंग एओर्टा, थोरक्स में है ना लेकिन है डिसेंडिंग, नीचे को जा रही है, थोरेसिक डिसेंडिंग एओर्टा नाम रख दिया, और जैसे ही वो डायाफ्राम

0: एक मेम्ब्रेन है जो छाती और पेट को सेपरेट करता है आपस में, उससे गुजर कर नीचे गई तो उसका नाम हो गया डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा। आगे फिर चलेंगे इसकी बात के लिए, हम छाती तक रुक जाते हैं। तो इसी तरह ही ये जो है हमारा एओर्टा खून सप्लाई करने वाली नाली, ये भी नीचे जा रही है, ईसोफेगस भी नीचे जा रही है, और ये इनको हम फ्रेनिक ओपन बोलते हैं। फ्रेनिक इस डायफ्राम का दूसरा नाम है, और फ्रेनिक नर्व भी है जो इसको सप्लाई करती है, उसका भी आगे वेरवा आएगा तो हम बताएंगे ऐसा लोगों को फ्रेनिक नर्व क्या है, कैसे करती है। मैं सिर्फ छाती तक लिमिटेड हूं कि छाती से पेट में जाने तक बहुत सी चीजें हैं, नर्वस सिस्टम है, ईसोफेगस इंपॉर्टेंट तौर पे है, ये जो खून नीचे लेके जाने वाली नाली है आयोटा जिसका नाम बोला वो है, उसके बाद नीचे से ऊपर को खून लाने वाली उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। जैसे मैंने ऊपर कहा सुपीरियर वेना केवा जो ब्रेन का खून नीचे लेकर आई, जो नीचे से ऊपर खून लेकर जा रही है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा, वो भी तो यहीं से गुजरेगी। तकरीबन 7 डिफरेंट इंपॉर्टेंट ओपनिंग है इस डायफ्राम में, ये जो बॉर्डर बना हुआ है ना चेस्ट का और अब्डोमेन का, 7 डिफरेंट ओपनिंग्स हैं इसमें जो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर आने जाने के लिए, लेकिन ये निकलते कहाँ हैं, जिसको हमने मीडियास्टाइनम बोला, जो छाती का सेंट्रल भाग है जिससे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिनका भी मैंने आपके सामने नाम दिया, ये सब चेस्ट के बीचों बीच ऊपर से नीचे तक निकलते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं कुछ नीचे जाते हैं, ताकि आदान प्रदान होता रहता है, आवाजाही होती रहती है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर कोई नुक्स हो गया तो ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इसमें कुछ चीज में कोई नुक्स हो गया, अब कितनी चीजें हैं कि कैसे पता चले ईसोफेगस में नुक्स हो गया है, या फेरिक्स में नुक्स हो गया है, या ब्रोंकस में नुक्स हो गया है, या एओर्टा में नुक्स हो गया है, या वेना केवा में नुक्स हो गया है, इतनी जो चीजें हैं। ये बात मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि भाई अगर इनमें से किस चीज में भी नुक्स हो जाता है तो आपको कैसे पता चले बाहर, जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब तो जाएंगे ही जाएंगे, हम आपको वो जो क्लिनिकल डायग्नोसिस की बातें हैं वो बताएंगे। उसके बाद अगली बात इस छाती के बारे में पूरी हम कर लें तो फिर हम बताएंगे निशानियां क्या है। जब छाती को हमने सेंट्रलाइज एरिया, जिसको हमने मीडियास्टाइनम कहा था, उसमें बांट दिया, जिसका मतलब क्या हुआ, एक दाहिने साइड हिस्सा रह गया, एक बाएं साइड हिस्सा रह गया, और दाहिने और बाएं साइड को जो हिस्सा रह गया उन दोनों चीजों को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरा एक इस तरह का मेम्ब्रेन है जो हमारे फेफड़ों के ऊपर कवर किया हुआ है। मैंने कई बार ये बात बताई कि बहुत सारे अंगों के ऊपर कुदरत ने एक इस तरह का गिलाफ चढ़ाया हुआ है, और क्योंकि हर अंग अपनी मूवमेंट में है, किसी की ज्यादा मूवमेंट है, किसी की कम मूवमेंट है, किसी ज्यादा है, किसी के कम है, और वो जो मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, उसके मुताबिक उसको फैलना होता है सुकड़ना होता है, फैलना होता है सुकड़ना होता है, और ये फैले सुकड़े इसकी बाहर की बाउंड्री को कोई हर्ज ना हो, इसकी बाउंड्री को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हरेक अंग के ऊपर कुदरत ने एक ऐसा गिलाफ चढ़ाया है, और उस गिलाफ का जो फेफड़ों के ऊपर चढ़ा हुआ है उसका नाम है प्लूरा, और दाहिने साइड भी फेफड़ा है बाएं साइड भी फेफड़ा है, इसलिए एक राइट प्लूरा हो जाएगा, एक लेफ्ट प्लूरा हो जाएगा। ये जो प्लूरा है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, और ये जितने भी जैसे हम बोलते हैं कि भाई दो लोब है बाईं तरफ, तीन लोब है दाईं तरफ, और इन लोब्स के अंदर तक भी ये जाता है और उसको अलग अलग सेपरेट दोनों को तीनों को या दोनों को करता है, और ये इसकी खासियत है कि उनके फैलने या सुकड़ने में इसको फैसिलिटेट करता है। इसके जितने भी कवरिंग्स हैं, जैसे हार्ट के ऊपर कवरिंग है पेरिकार्डियम उसको बोलते हैं, और एब्डोमेन के ऊपर जो स्किन के नीचे का जो आंतरियों के ऊपर है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं, वो सभी कवरिंग जितने भी है ना ये पूरे डबल लेयर कवर्ड हैं और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा फ्लूइड कुदरत ने रख दिया है ताकि अगर ये फैले या सुकड़े अंदर के अंग और उनको फैसिलिटी उतनी मिल जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ चेस्ट की, ये जो चेस्ट है ना इसके प्लूरा के दो हिस्से हो गए और इस प्लूरा के जो दो हिस्से, एक प्लूरा को हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, जो अंदर वाला लेयर है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, जो बाहर रह जाता है उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। बाहर वाला जो है पसलियों के अंदर अंदर तक लगा होता है, अंदर वाला जो है वो फेफड़ों के साथ साथ चिपका होता है, फेफड़े फैलते हैं वो भी फैल जाता है, फेफड़े सुकड़ते हैं वो भी सुकड़ जाता है और इसके अंदर का जो फ्लूड है वो इसको फैसिलिटेट करता है फैलने के लिए। इस तरह दो बैग हो गए जिन दोनों बैग में हमारे दो फेफड़े रहते हैं और उसके बाद इन दोनों फेफड़ों के बीच में हमने मिडियास्टाइनम बनाया था, मिडियास्टाइनम के अंदर ही लिपटा हुआ हमारा हार्ट भी है, हार्ट का बहुत सारा पोर्शन भी है। और हार्ट को आप सभी लोग ऐसे ही मोटे तौर पर जानते हैं कि भाई हार्ट तो छाती में खबे तरफ होता है, बाई तरफ होता है, बाई तरफ हम मानते हैं, ठीक है ज्यादा बाई तरफ होता है, उसकी जो सरफेस एनाटॉमी हम उसको बोलते हैं। मैंने बहुत बार यहाँ इन प्रोग्राम में बताया भी और आगे आने वाले समय में मैं फिर दोबारा बताऊंगा समय समय के मुताबिक कि हार्ट अंदर है, लेकिन अब हम इतने काबिल हो गए हैं इस जानकारी में कि हम देख पाए कि इसके वाल्व कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, कहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है, कहाँ पर राइट एट्रियम है, कहाँ पर लेफ्ट एट्रियम आता है। छाती से ऊपर ही हम जान सकते हैं कौन सा वाल्व जो है वो कहाँ पर है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को जाने वाला जो वाल्व है वो कहाँ पर होगा, और अगर उसके अंदर कोई खराबी है तो हम छाती के ऊपर से कैसे जानेंगे, हम जान सकते हैं। इसी तरह ही वेंट्रिकल का जो और ऊपर वाला जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है उनमें से लगा हुआ जो वाल्व है वो उसको जानेंगे तो कैसे जानेंगे, तो हम छाती के ऊपर से ये चीजें जान सकते हैं कि भाई वो कहाँ पर है और वहां पर की आवाज जो है वो हमारे कानों में फिट है, हमारे ब्रेन में सेट है, और वो आवाज उस तरह की नहीं होगी तो हम कहेंगे ना इसके तो ट्राइकस्पिड वाल्व में नुक्स है, इसके तो बाइकस्पिड वाल्व में नुक्स है या इसके लूनर वाल्व में है, सेमी लूनर वाल्व जो जैसे पल्मोनरी का होता है, इसी तरह ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाहर से ही। ये निशानियां मैं बताऊंगा आप सब लोगों को बताऊंगा, मैं सिर्फ हर चीज को इस तरह एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किसी को कोई ये ना रह जाए कि मुझे तो समझ नहीं आया ये क्या कहा, ये ना रहे। मेरी कोशिश ये है कि मैं इस तरह बताऊं कि आप सब लोग समझ जाएं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि छाती के अंदर दो फेफड़े हैं, बाईं तरफ के फेफड़े में दो लोब हैं और बाईं तरफ में ज्यादातर हिस्सा जो है हार्ट का होता है, और हार्ट की जो बाउंड्री है ना राइट साइड में बाउंड्री, वो जो हमारी सामने की स्टर्नम है ना, स्टर्नम की हड्डी से सेंटर से मिले, जैसे तहसीलदार आते हैं ना निशानदेही करने के लिए जमीनों की, तो जरीब होती है उनके पास, तो जरीब से वो पत्थर लगे होते हैं उसी वो नापना शुरू कर देते हैं, यहाँ से नापेंगे तो यहाँ तक ये भाई तुम्हारी है, यहाँ पर पत्थर लगा दो या निशान लगा दो कि ये तुम्हारी जमीन है, इसके इधर इसकी जमीन है, रौला हो जाता है कुछ कुछ वो सेल्फ सॉल्व कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में हार्ट है लेकिन हार्ट का कुछ हिस्सा राइट साइड में भी है, और वो मैंने निशान दे करके आपको बता दी कि अगर स्टर्नम के सेंटर से हम मिनती शुरू करें तो स्टर्नम के सेंटर से 1.2 सेंटीमीटर सेंटर से राइट साइड को हार्ट की बाउंड्री है, उसका एरिया वहां तक है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं इसके मुताबिक कि अगर इस एरिया तक में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो हार्ट की हम निशानियां आपको बताएंगे तो फिर आप अंदाजा लगा लेंगे कि हार्ट में है, ऐसा ही नहीं कहेंगे कि हार्ट ये जो फेफड़ों में ही है, नहीं, फेफड़ों और हार्ट की जितने भी चेंजेस हैं आपस में वो आप अलग अंदाजा लगा सकेंगे कि नहीं ये तो फेफड़ों में हार्ट में नहीं है, होगी आपको निशानियां पता होगी। इस हिसाब से ये जो चेस्ट के अंदर का जितना भी सिस्टम सेट किया हुआ है वो कॉम्पैक्ट टाइप का बहुत इम्पोर्टेंट टाइप का स्ट्रक्चर है इसमें, और इन सभी में हर एक की अपनी बाउंड्री है, और जब भी किसी में कोई खराबी आएगी उसकी अपनी रफ्तार में, उसके अपने चलन में रुकावट आ जाएगी, और वो जो रुकावट आएगी आस पड़ोस को तकलीफ देगी, आस पड़ोस का चलन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तकलीफ अगर हार्ट में हुई या तकलीफ मीडियास्टाइनम के किसी और ईसोफेगस में हो गई तो इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट साथ वालों को भी होगा, इसका इफेक्ट ऊपर भी होगा, इसका इफेक्ट नीचे भी हो सकता है। तो ये सब चीजें कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे हम जानें कि भाई ये ईसोफेगस में है या हार्ट में नुक्स आ गया है, या वेना कावा का नुक्स है, या एओटा का नुक्स है। ये सब चीजें हम आपको इन्हीं प्रोग्रामों में बताएंगे कि इसमें नुक्स हो तो आप क्या कैसा समझेंगे, बाहर की कौन कौन सी निशानियां आपके सामने आ जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में मैंने आपके सामने ये स्पष्ट कर दिया कि चेस्ट है क्या, कौन कौन सी हड्डियों से बनी है ये, वो हड्डियां कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे अपनी पूरी दूरी में एक दूसरे के साथ बची रहती हैं और एक केज बना देती है, पिंजरा बना देती हैं, और उस पिंजरे में कौन कौन सी चीजें रहती हैं, और उसका नाम मैंने मीडियास्टाइनम बोल दिया, मीडियास्टाइनम में उसके बाद ईसोफेगस बोल दिया, उसके बाद हमने ये जो मेम्ब्रेन था डायफ्राम का उसकी बात हमने कर दी, उसके बाद हमने ट्रेकिया की बात कर दी कि उससे नीचे ब्रोंकस जा रही हैं, उसके नीचे जो है ईसोफेगस जा रहा है। ये सब बातें यहाँ से निकली। एक बात जो आज के इस प्रोग्राम में, अभी हार्ट की मैंने बात की है, लंग्स की मैंने बात की है, हार्ट और लंग्स जो है वो अपने अपने दायरे में कवर्ड है, उनको बाउंड्री दे दी कुदरत ने कि भैया पेरिकार्डियम के अंदर अंदर ही तुमको रहना है, ये फेफड़े हैं ये इसके अंदर अंदर ही तुमको रहना है। लेकिन जैसे ही फेफड़ों में कंजेशन हो गया, निमोनिया हो गया, फिर जैसे ही हार्ट में कोई नुक्स हो गया, कोई वाल्व काम नहीं कर रहा है, कोई जो जो उसकी आर्टरीज हैं उनमें कोई कोरोनरी आर्टरी में कोई डिफेक्ट आ गया है, तो वो साइन एंड सिम्टम पैदा करेगा। जैसे वो मैंने रोडी वाली बात शुरुआत में कही थी कि आप कंकर फेंक दें पानी में, जैसे ही आप उसमें कंकर फेंक देंगे लहरें निकलेंगी, ठीक उसी तरह ही हार्ट में अगर कोई चेंजेस आएगी तो किस तरह की लहरें होंगी, हार्ट में या फेफड़ों में अगर कोई तब्दीली आ रही है तो किस तरह की चेंजेस होंगी जो बाहर आप महसूस कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस है, लोबर निमोनिया है, इस तरह की अलग अलग नाम है बीमारियों के, और उनमें अलग अलग तरह की चीजें आपके सामने आएंगी कि भाई क्या क्या निशानी। पहले हम जनरल निशानियों की बात करेंगे, अगर फेफड़े में नुक्स हुआ तो बाहर क्या देखेंगे, हार्ट में नुक्स हुआ तो बाहर क्या देखेंगे, मीडियास्टाइनम के किसी कंटेंट में कोई ऐसा नुक्स हुआ तो फिर बाहर आप क्या देखेंगे। ये चीजें मैंने आप सब लोगों को आगे इन प्रोग्रामों में बतानी है, और आज का ये चैप्टर मैं समझता हूँ मैं आगे ना करूँ। हाँ, एक बात रहेगी वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बारे में पहले भी बात हुई होगी क्योंकि बड़ा लंबा समा हो गया बोलते हुए मुझे, अब मैं फिर बता रहा हूँ कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, अरे भैया काहे फिरता फूलिया फूलिया, जब 10 मास उर्द मुख रहता शोधन कैसे भूलिया बड़ा, तेरे को वो बातें भूल गई हैं, जब माँ के पेट में उल्टा लटका हो तब तेरी रक्षा कौन कर रहा था। हाँ जी, लेकिन मैं जो मेडिकल व्यू पॉइंट दे रहा हूँ आपको, मेडिकल व्यू पॉइंट ये है कि शरीर में अपनी एक इम्यूनिटी है, बच्चा पैदा हो जाता है माँ से तो अलग हो गया ना, कौन सी ऐसी इम्यूनिटी है जो उसको बचा के रखती है, अलग अलग विंग है, सेक्शन है प्रोटेक्शन के लिए। तो उस वक्त कुदरत ने जैसे ही स्पर्म एंड ओवम आपस में मिले, जैसे ही फीटस की डेवलपमेंट हुई, जैसे ही वो डेवलप करना शुरू हुआ, कुदरत ने कहा कि भाई अब तेरी خوراک جو تیرے کو ماں دے رہے گی، ماں کی طرف سے کچھ ایسا بھی آ سکتا ہے جو تیرے کو نقصان دے دے، اور اس کو بچانے کے لیے بھی یہ ہم تیرے کو ایک گلینڈ دے رہے ہیں جو اس کی پروٹیکشن کرے گا، جس کو جیسے ہم باہر کا بات کرتے ہیں کہ لمف نوڈز کی، کہ جتنا جہاں جہاں آرٹری ہے وہاں وہاں وین ہے، جہاں جہاں وین ہے یہ وہاں وہاں لمف نوڈ ہے، وہاں وہاں لمف چینل ہے، وہاں وہاں لمف چینل کے ساتھ نرو ہے، یہ چاروں چیزیں ایک دوسری کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ہیڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو الگ الگ طرح جیل ہے جس کو ہم لمف نوڈ بولتے ہیں. اس کا بڑا باس کون ہے؟ سپلین ہے، تلی ہے جو ہمارے لیفٹ سائڈ میں ہوتی ہے. اس کے بعد بہت بڑا باس کون ہے؟ نہیں ابھی نہیں بات کرنا ہے. اس کے بعد جو تلی ہے، اگر مان لیجیے تلی سے بھی کوئی چیز نہیں، بیماری ہوئی، کینسر ہوا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لمف نوڈ پھوٹ گئی ہے تو ہم بولتے ہیں ابھی ڈاؤٹ فل ہے کچھ، ہم ٹیسٹ کرنے شروع کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لمف نوڈ تو بہت شریر میں اور بھی پھیل گئے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تلی بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ ان کا باس ہے، خون کو صاف کرنے والا. جو گاربیج آ رہا ہے کسی بیمار انگ سے، اس بیمار انگ سے آنے والے اس گاربیج کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہمارے پاس انگ دیا ہوا قدرت نے، اس کا نام سپلین ہے. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپلین کا بھی ایک باس ہے جس کو ہم تھائمس گلینڈ بولتے ہیں. اور تھائمس گلینڈ ہارٹ کے اوپر چھاتی کے اندر لگا ہوتا ہے، اور تھائمس گلینڈ قدرت کا وہ تحفہ ہے اس جیون کے لیے کہ جب تمہیں تیرے پاس اور کچھ نہیں تھا نا، اس وقت یہ تھائمس گلینڈ تیرے پاس پروٹیکشن کرتا ہے. جتنا بھی گاربیج، جتنا بھی کچھ ایسا اس وقت پیدا ہو رہا تھا جو تیرے کو نقصان پہنچا سکتا تھا، اس کو سیٹ کرنے کے لیے یہ بھی لمفوئڈ آرگن. اور یہ جو گلینڈ ہے، تھائمس گلینڈ ہے، یہ بھی تو بھائی اسی میڈیا اسٹینڈر میں ہی ہے نا، یہ بھی ہارٹ کے اوپر لگا ہوا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت اچمبھا ہوا ہوگا کہ شریر کے اندر رہتے ہوئے بھی تو گاربیج بنتا تھا نا، اور اسی میں رہتا تھا، اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے کیا چیز تھی؟ تو یہ تھائمس گلینڈ اس وقت اس شریر کی رکشا کر رہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، تیری رکشا ماں تو جو کرنا کرتی ہے، ہم بھی تیری رکشا کریں گے تاکہ تم زندہ رہے اور باہر آ جائیں. اور جیسے جیسے بچہ باہر آتا ہے، بڑا ہونا شروع ہوتا ہے نا، اس کی اپنی امیونٹی ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے، تھائمس گلینڈ کا کام کم ہو جاتا ہے اور تھائمس گلینڈ چھوٹا ہو جاتا ہے. پہلے بڑا تھا، اب چھوٹا ہو گیا. بچہ چھوٹا تھا، وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا تھائمس گلینڈ اس کی پروٹیکشن کرنے والا. پہلے ماں باپ رکشا کرتے ہیں نا، انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں. بچہ جوان ہو جاتا ہے نا تو بولتا ہے ٹھیک ہے، اب یہ اپنی رکشا آپ کرنے ہی ہوگا، پھر ماں باپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہی ایک طرح ماں باپ کا درجہ رکھنے والا ہمارے پاس اس وقت تھائمس گلینڈ ہوتا ہے. بھائی یہ بھی اس میڈیا اسٹینڈم کا ہی حصہ ہے، اور اس میں اگر کوئی خرابی آئے گی، اور مان لیا جائے دلی سے کچھ نہیں ہوا، یہ پورے شریر میں لمف نوڈز ڈیزیز اس کو بولتے ہیں، بہت سے شریر میں اس طرح کی گلتیاں بن گئی، بہت کچھ ایسا بن گیا جو کوئی اور حل نہیں ہو رہا، تو اس وقت یہ تھائمس گلینڈ بھی پھر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تھائمس گلینڈ کا کام بھی بڑھ جاتا ہے. نہیں بھائی، اب کسی سے نہیں سنبھلتا، اب لمف نوڈ نہیں کنٹرول کر پاتے، اب تلی بھی بیچاری نہیں کنٹرول کر پاتی، اب تم سہائی ہو بھائی، اب تم میری مدد کرو، تو اس وقت یہ جو تھائمس گلینڈ ہے یہ پھر بڑا ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کا سما میرا سماپت ہو رہا ہے. ابھی بہت سی چیزیں ہیں میرے پاس کہنے کے لیے اس چھاتی کے سمبندھ میں. اگلے پروگرام میں پھر ہم اس کا ویروا آپ کے سامنے کہیں گے. اور میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، کم سے کم وہ انٹرسٹ لے کر سنیں، روزانہ ان پروگراموں کو سنیں، اور اگر اچھے لگے تو دوسرے اپنے رشتے دار بہن بھائیوں کو بتائیں. کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ میں اس طرح، ایسے نہیں کہ میں میڈیکل کالج میں لیکچر کر رہا ہوں، میں نے کہا لیکچر کیا اور بس چلتا بن، نہیں. میرا کام یہ ہے کہ جو بھاشا آپ سمجھتے ہیں، جو ایگزامپلز آپ سمجھتے ہیں، جو آپ کے روٹین لائف کے ساتھ بندھتے ہیں، اس طرح کی باتیں میں آپ سے کروں جو آپ آسانی سے سمجھ پائیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. بتا تو شریری کے بارے میں رہا ہوں، لیکن آپ اس کو اس طرح سمجھ جائیں جس طرح آپ اپنے کھیتوں کے بارے میں جانتے ہیں، جس طرح آپ اپنے جانور پشوؤں کے بارے میں جانتے ہیں، اس شریر کے بارے میں بھی آپ اس طرح جانیں کہ بھائی ہر چیز آپ کی نظر میں ہو کہ کیسے کیسے ہو. تو میں گردیپ سنگھ سندھو आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूँ 9701 सेरा एन कोट डबलन कैलिफोर्निया 94568 फोन नंबर 408-687-1899 किसी भी वक्त किसी बीमारी के बारे में आप समझना चाहते हैं सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 408-687-1899 कंसल्ट करने की कोई फीस नहीं है किसी भी दुनिया के कोने से आप मुझे कॉल कर सकते हो अब तो व्हाट्सएप है हर जगह ही है कहीं से भी आप बिना पैसे के कॉल कर सकते हो और अगर नहीं भी कॉल करना चाहते तो ईमेल है होमियो मेडिसन homeomedicine@yahoo.com तो किसी भी वक्त ईमेल करके भी आप अपना सवाल मेरे पास भेज सकते हैं और उसका जवाब आपको मिलेगा उस तरह ही मेरी बेस्ट जजमेंट जो 52 ईयर्स मेरा मेडिकल का प्रैक्टिस फील्ड हो गया और इस समय पे पढ़ते पढ़ाते जो नॉलेज मैंने इकट्ठा किया मैं वो आप सब लोगों को दे जाना चाहता तो किसी को किसी जरूरत हो अगर आप होम्योपैथिक तरीके से किसी बीमारी का इलाज ही करवाना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हो 408-687-1899 आप सबका रब रखा आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ सत श्री अकाल आदाब नमस्कार
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत ही मेहरबानी बहुत वड्डियां जानकारियां दोस्तों ताडा भी धन्यवाद चीमा साहब ताडा भी मिलते हैं जी परसों नूं फिर दियो इजाजत मेरे वल्लों बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी
0: सत श्री अकाल

0: अरे मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर, अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
1: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
0: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?
1: आएगा, आएगा।

0: हेलो
1: बबी जी, मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही हो रहा कोई। मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर इन्हों आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर।
0: हेलो जी
1: बबी हेलो जी हे हे कितने हाल हो बबी जी सुन रहे हो मैनू।

छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना है कट जमला पगला दीवाना हो रप्पा किसी बात न जाना के ओ मैं प्यार करती है सजे उसे ओ मरती है के ओ मैं प्यार करती है सजे उसे वो मरती है मैं जट यमला।

सो दोस्तों, मैं गलबात कर रहा सी कि उस वक्त जेड़े लोका ने दावा किया सी कि धरती चपटी नहीं गोल है, उस वक्त दे जमाने ने उन्हां नूं सजाए मौत दित्ती। ते भारत दे विज्ञानियां दी गल सुन लो, असी तकनीक ते पश्चिम दी है ना नकल मार के जे कुछ बना भी लईए, धार्मिकता दे पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं गल कर रहा। जदों मंगलयान जदों भारतीय विज्ञानियों ने बनाया ते आपे बना के बना लिया, फिर नारियल भन के धूफा जगा के उदी पूजा करन लै पे। हद हो गई इहदे च, की तुसीं जिहड़ी मशीनरी बनाई है ये कोई की है? कोई देवता बनाता है तुहां? कोई रब बनाता है जिहदी पूजा करन रहे हो? हाथीं तां तुसीं इह सारा कुछ बनाया है, भावें तकनीक किसी होर कंट्री दी सी, कोई गल नहीं, पर तुसीं चलो बनाया है ते इहदे च पूजण वाली इहदे नक्क कसाउण वाली किहड़ी गल है? रफेल जहाज जदों लै गए, राजनाथ सिंह हुणां ने उहदे टायरां थले नींबू रखे, नारियल तोड़े, हांजी उहदी आरती उतारी, उह जहाजां दी पूजा कीती। ओए जेड़े इंजीनियरां ने इह जहाज बनाए होणगे उह तुहाडे बारे की सोच रहे होणगे? कि तुहानूं कुछ होर वी याद है, चेते आउंदा कोई कोई पूजण तों सवा, चूहियां तक पूजण तों सवा, हर वह चीज जिहदी समझ ना आए उहदे अगे मत्था ही टेकी चले जाणा, नदी अगे मत्था टेक देना, दरख्त अगले अगे मत्था टेक देना, फलानी चीज नूं इट्टां दा ढेर जिथे लगा होएगा उथे जा मत्था टेक देना, यह अंधविश्वास है, धार्मिकता नहीं। जहाजां दी पूजा कीती गई जी, नींबू नींबू धर के, ए जहाज की गल है? तुहाडे पूजा करन नाल पेट्रोल घट खाणगे जां तुसीं इहदे ते कोई फायर करोगे ते बंदे ज्यादा मारनगे, जां इहनां नूं कोई गोली टच नहीं करेगी दुश्मन दी? की किहड़े पॉइंट ऑफ व्यू दे उत्तों तुसीं मतलब कि उहनां दी इह पूजा कर रहे हैगे सी? मैं अपनी धार्मिक मैंटैलिटी की गल कर रहा भारतीयां दी, जहाजां दे नहीं कोई इतराज। मैं सोच की गल कर रहा भाई, असी सोचते किदा वा प्यारे भारतीयो? पिछले 2000 साल तो तुहानू धर्म का कोई फायदा होया? हां जी, हो सकता धर्म फायदेमंद ही होवे, पर तुहानू फायदा नहीं कोई होया, नुकसान ही होया इहदा। सारी दुनिया का मार्टिन लूथर वर्गे जड़े हैं, पूरा जोर ला के उन्होंने प्रचार किया कि धर्म एक मकड़ जाल है, ते अंधविश्वास उहदे तों भी वड्डा मकड़ जाल है। आओ देश का विकास अरदासां करके नहीं, पखंड करके नहीं, दीवे जगा जगा धूफा जगा जगा देश का विकास नहीं होना। धूफ का, आरतियां का, अरदासां का विकास नाल कोई संबंध नहीं। तुसीं एवें अपने मन की शांति वास्ते सोच है तुहाडी कि यह अरदासां नाल हो जाएगा, नहीं, हत्थी करके होना है, कोशिश करके होना है। आओ देश का विकास अरदासां करके नहीं, खुद मेहनत करके करिए, रब को मंगण दी थां चीजां खुद पैदा करिए। अहे बाबा टल पक्की पकाई कल, मंगण दी थां आओ खुद पैदा करिए। स्वर्ग नरक नूं मारो गोली, अपना मुल्क ही स्वर्ग बनाइए। दोस्तो ए बिल्कुल सच है, असी अपना मुल्क स्वर्ग बनाउणा है के नरक बनाउणा है, ए देश दे नागरिकां ते सरकारां दे हाथ विच हुंदा है।
ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਐਂਡ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕੌਆ ਕੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੌਏ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਕਦੀ?

0: Yo me meto y ahí me cargo. Lo y me estoy cargando.
1: जनहित विच सूचना मशहूर होम्योपैथिक सर्जन डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू उम्र दे 75वीं साल दे विच मेडिकल प्रैक्टिस दे 50 साल पूरे होण ते अमेरिकन इकॉनमी दी सब तो माड़ी हालत होण करके ए ऐलान करदे ने कि हरेक बीमार व्यक्ति जो किसी भी उम्र दे विच किसी भी बीमारी दा इलाज करांदा थक गया है तां जो भी उसकी जेब इजाजत दिंदी होवे ओही देके इलाज करवा सकता है। बस इना ख्याल रखियो कि मुर्गी भी ना मरे ते अंडे भी मिलते रहन। इना दे इलाज करन दी समर्था बनी रहे ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਕਾਲ ਕਰੋ 408-687-1899।
0: ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ।

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खत पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 855-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट दे दोस्त दर्शन सिंह खट दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते।
1: दोस्तो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज। एक्चुअली ए प्रोग्राम 7 तों लैके 9 बजे तक हुंदा, टाइम चेंज हो गया सी, रिकॉर्डिंग थोड़ी जी 6 बजे वाली है। सो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। लो कुछ गीत सुनदे हैं जी। पहला गीत आपां सुनदे हैं, बहुत प्यारा जिहा गीत है हिम्मत संधू दा ते बाजी दिल दी, ते फिर आपां अगले गीत दे नाल चालू करांगे जी।